0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: நீயே சொல்லு
2: நீயே சொல்லு
1: நீயே சொல்லு